0: चिखत फैदा और खाना केवम समाव कंदेवान ये फैदा और खाना केवम की तिकुदिंगे केवम फैदा और खाना केवम की तिकुदिंगे केवम केवम वरबोड़ा एक एदेवे असर कुरान कामे हम यह मिहारु गत कुदिं वरबोड़ा जहिलु वाकामे ओलुं आरा बैते टीचर उन्ना सुवाल को ओलुं फिलो मैं एक गोता कब्बस तिकुदिंगे की बैं फेनिकिंग वान कांते तक एनु तिकुदिंग मैं बफेन के एक गोता टीचर हूँ बस तिकुदिंग देखे वरब बड़ा लो भी वे ने मैं तिकुदिंग एवस टीचर देखे जहिनु वे के नुआन जहिनु मुगे बादलुगा तिकुदिंग कुम्बे दुआ को स्गे दाम वाने एदुहे के फिला वालों को बुना आच्चे टीचर उन्ना सुवाल को रंगला देहवे फहम कोगे हामिया को कामयाब दरिवर का वुमट्टा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगाफवा गोता कुदिंगे अमलता बेहटुम के वरम मुहिम मुकाम मिग तेरेगा फरोद फसनमा आद बराबर अदा कुरुम के इतुरु कुम्मे दुआ कुस्त कुदिना कामयाब देवु मंगेदि दुआ कुरुम के आरम मुस्लिम न वीतीव कुम्मे दुआ कुस कुरन जेहे वरम मुहिम मुकाम
1: वरम मुहिम वाहक तक दो मुदरिस ए हंदेन को देबी
2: हुद नेंगे अची मिसकारी ओलुम फिलुवंता
1: हुद बलन हम नेंगे अच वेजे मिसकारी हागेन ओलुम फिलो
2: ती वर रंगल कमेंगे एहेन वी मा हुरी हा कुदिम मिस मिस एबुने वी वाहकता रंगल अडवा ए वाहकता कन अमल कुरम वानेंगे
1: जुहेरा मिस देवे न सेहत को गा हिफा हट्टा फेनम इराद कुरेविया कोम्मे कुज्जे के वेस मुस्तकबल वरम उजाला वा
3: अलगर नमकी आयशत लजाई नाफियो अलगर उलानी खाला फांस कोल का ग्रेड सेवन का अलावर क्यों अलगर फैशी ग्रेड फाइव का दें आदबी मुबारक तक आए का अच्छे का बारे वगैरह दल अलावर क्यों अंगो दफाई तक पूरी मेरा अलगर की अलगर स्कूल का इंग आदबी मुबारक तक की अलावर

0: मुन्ना कोबा की है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में क्या दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरा को वैन्ना हिंग कमेंने अफन थी कंको लन्ना
1: तिको तुम हाउ दाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बलाफे मुन्ना रकां कंको दिन नहे दी मुन्ना वरहा उपावे
3: ilmi nurung hittang aro kurwa deduniyege baajverikama magu dakkaade
4: tulaheo futunteri ufaver dirulmaka rasta fahikotte
3: ummidu aakoddi ekaniverikam filuade
4: divehrajjege adu
3: engha satarsege 40 kilohertz medium wave
4: 89 megahertz fm band

0: खबर काटी।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं दिव्य राज्य गड़के खबर गड़ी प्रोग्राम मेरे के प्रोग्राम आय की बदल कोली अलगुंड अजीजा फारूक मेरे के प्रोग्राम कही मैंने मुहिम खबर तोगे तेरेगा नमस्ते काहर इस्लामी गांव में गे गोत गांव थी दिव्य हिराई तुंगे ही तुगा इस्लाम दी नंगो लोई पे के सब बुना दोस्तोरी को तुन राज्य का इस्लाम दी हिमा हिमाय विफाव तुम कमा इस्लामी कंत तक आउगा फा बिहे वजीर विताड़ वेच माले के हानी मागुता होगे डिजाइन बदल गए ने स्पार्क करवे ने लोई फा सह गोत तक है दुमा मिहार मसे के कुरमुंदा कमा इक्तिसादी तरक गिया दा तुरफतुरा व्यफारिया बिहे वजीर विताड़ वेच बुरास्पति दुहगेरे हिंगे हादिसा या गुड़गेन सेनामाले ब्रिज एव स्ट्रक्चरल गेलो मेलि बिफाणुआ कमा बिनारा गेदोर वेलकामा इमारा कुरुमा बेहे वजीर विदाड़ वेजे मस्तो अतगेति बेरुं कुरुमा गे दो कुरि मसलेगा गे वेरिफारा जिम्मा दार कुरुमा की मस्तो अतगेचा देकोला सरकारुं कुरा मसा कतलिबुनु बोड कुरियर मेकमा दाखिली सलामता मसा केतेरिकमा फन्नियता बेहे वजीर विदाड़ वेजे ईराना देखोला एक्वेरी दावलत तक उंगला फावा दति कुरुम गे फियवल तहु गे कानूनी सहकमा मेदु अलिफ ताल गे सलामती मजलि हु गे दाई मी फस मेंबर उंगे मेदुगा वारुगा द कुरिम तिलो में हिंगाफी इदु आदिवसीतुर खबर ता देंगा सवा खबर तोगे तफसील रईसुल जुमहुरिया डॉक्टर मुहम्मद मुईजुगे दावत का मलेशिया के बड़ वजीर अमर इब्राहिम राज्य फुरमान दुर्फुले कुरेवुमर निम्मवैफी रईसुल जुमहुरिया के उफीहु मिदाल्वी मलेशिया के बड़ वजीर राज्य वडा नवणी मिमाहुगे साहते फनरियक्कमा मलेशिया के बोर्ड वजीर राज्य वडाग तुमगे दावत रईसुल जुमहुरिया अरुवा फावणी देहस फंस विस्वनाहरुगे एप्रिल माहु एमन फान मलेशिया कुरेवी रस्मी दतुर्फुलगे तेरे मी बोर्ड वजीर अमर इब्राहिम मलेशिया के बोर्ड वजीर कमगे मगामा देहास बाविस्वना हरुगे नवंबर माह हवाल वडेगा तुम फहु राज्य कुरवा फुरत मदतुरफुल मिदतुरफुलगा मलेशिया के बोर्ड वजीर रईसुल जुमहुरिया या बदल कुरवा देगाउम के देमेतुगा रस्मी वाहक फुल तब्बा बवाने मी वाहक फुल तवगा देगाउम के देमेतुगा वा गुलुमा बाइनल लगवा मी मैदानुगा एपारलुं इतुर कुरुमगे इतुरों एकी दायरा तकुं गुलुं बदेही कुरे विदाने आ तुरत हुलु मा गुलेगुतुं मश्वरा कुरवाने कमा रईसोफी हुं विदाल्फी मी गेतुरुं देगाउमगे गुलुं इतुर हरदना कुरुमट्टका बाय मुहिम्मो दायरा तकुं एब्बसुं तवगा सोय कुरेवुमगे रस्मियात दे लीडरुं शरफ फेरिको देवाने कमा वेस विदाल्फी मलेशिया के बोर्ड वजीर उम्मीदा तुरफुल गे तेरे रईसुल जुमहुरिया के नैब अलोस्ताज हुसैन मोहम्मद लतीफा रई तुंगे मजलि हुगे रईस अब्दुल रहीम अब्दुल्लोगी तुरुंग खारजी वजीर इर्तिशाम आदम बोर्ड वजीर के अरिह वकी वकीन इख्तिराम के जियारत तक कुरे वुमा विस्वनी हम चीफा दिवहिराजिया मलेशिया या देमेदु सियासी गुलुं गायम कुरिता फंसास अगहर फुरिफा वायरु देगाउमगे देमेदुगा अदि देगाउमगे दे दे रईतुंगे मेदुगा ओय पदहि गुलुमा मतीफंतिगे बद्दल वंतौगे इतुरुं तरग्गीगे एकि दायरा तकुं देमिगेम्वा गै रहमे तिरिकमे वणि गायम कुरेफा नुस्ते काहर इस्लामी गांव में गिगोत गावती दिवे हिराई तुंगे हितुगा इस्लाम दीन अंगोय लोय बेगे सबबुना दोस्तोरी गोतुन राज्य गा इस्लाम दीन हिमाय विफाव तुंकमा इस्लामी कंत तका आउगा फा बेहे वजीर डॉक्टर मुहम्मद शाही मली साइद विदाड़वेचे हे अंबो प्रोग्राम का वाहक दक्कम वजीर विदाड़वी नुस्ते काहर राज्य इस्लामी गांव में गिगोत गादे म्योतुमकी इलाही मतिवेरी नियुमते कमा तफसील वफीका हामिद
2: इस्लामी कंतत्तका बे वजीर डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली सईद विदाड़वी राज्य इस्लाम वफह इस्लामी कौम के कुतका देमियोती दिवहिंग के तेरे कौन अदब रिकमा एब्बावंत कम गे साबुन कम अदि सियासे गुतु फिकुर तफातवेस कौम के मिनिमम कम अदीनु के खंकम का दिवहिंग के एब्बावंत कम अमदु शक के नेकम वजीर विदाड़वी नुसते कहर इस्लामी कौम के कुतका औती दिवे रईतुंग हितुका एकम ओइ लोय बे के सबबुना दुस्तुरी गुतुन राज्य का इस्लाम तीन हिमायफा उतुम कम वजीर फाह कुरेवी राज्य के रसरस कलोना